0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की

0: संवाद आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
0: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
2: The Prime Minister noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today, infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among women of the country has also increased. And Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, today launched the Capacity Enhancement for Effective Forest Management Project to support forest conservation practices. Addressing the inaugural session of the project launch in New Delhi, he said the project will promote innovation and the creation of more facilities in state forest institutes. Mr. Yadav said this project has been launched with an

कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंस्प्रेस चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आज है शुक्रवार और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर। और जब बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो हम कुछ ऐसा महसूस करते हैं। हमारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि तुम

असमर्थताओं में नहीं संभावनाओं में घिरे हैं। हर दीवार पे द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नीला आकाश और आवाज लता और रफी की। आज है 25 सितंबर जिसे हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। इसमें अंत का अर्थ है सबसे अंतिम या पिछड़ा हुआ व्यक्ति और उदय का अर्थ है उत्थान, यानी जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता तब तक राष्ट्र की प्रगति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी गगनचुंबी इमारतें नहीं बल्कि अंतिम कतार में खड़ा वो अंतिम व्यक्ति ही होता है। ये समावेशी और क्रांतिकारी विचार थे महान मनीषी और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, जिनकी जयंती आज हम सब मना रहे हैं अंत्योदय दिवस के रूप में। और इसके मूल में है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विचार जो कहता है कि अगर हमारे पैर के छोटे से अंगूठे में भी चोट लग जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है, वैसे ही हमारा समाज भी है। अगर समाज का एक भी हिस्सा, एक भी गरीब भाई बहन अभाव में है तो हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी कैसे हो सकता है। इस महान विचार को भी दुनिया के समक्ष रखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जिन्हें विश्वास था कि मनुष्य का विकास केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि उसके मन, बुद्धि और आत्मा के संतोष से होता है, और ये संतोष तभी मिलेगा जब आर्थिक प्रजातंत्र आएगा। तो ऐसी महान विभूति को आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और साथ में ये संकल्प भी लेते हैं कि हमारे आसपास जिन्हें भी हमारी जरूरत होगी उसकी हम मदद करेंगे और उसे

आगे बढ़ाने में हमसे जो भी संभव हो सकेगा हम उसे करेंगे और तभी होगा अंत्योदय और एकात्म मानववाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार।

आकाशदीप, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और आज है अनंत चतुर्दशी यानी कि गणेश विसर्जन की तिथि। 10 दिनों से भगवान गणेश के आगमन के हर्षोल्लास में हम सब डूबे हुए थे, लेकिन आज भारी मन से उन्हें विदाई दे रहे हैं। भले ही बप्पा के मूर्ति रूप को आज हम विसर्जित करेंगे, लेकिन हमारे मन में, हमारे हृदय में उनका निवास सदैव है और रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ कि बप्पा को हम विदा तो दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम सब मिल करके कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी इलाका और आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की। और अब बात जापान में चल रहे एशियन गेम्स की, जिसने हमारे देश में अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है और विशेषकर हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन तो हमें गर्व से भर ही देता है। महिला खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक समेत कई पदक अपने नाम किए हैं। सिल्वर मेडल की बात करें तो शूटिंग में इला वेनिल वालारिवन, वुशु में रोशेबीना देवी और वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर इतिहास ही रच दिया। इसी तरह कांस्य पदक लाने वाली महिला खिलाड़ियों की बात करें तो सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीता, सुचिका तरियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, और महिला स्किट टीम शूटिंग में परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान की टीम ने मिलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तो भाई हमारे खिलाड़ी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहें और हमारे देश में पदकों की बरसात यूं ही होती रहे, हम सब लोगों की यही शुभकामनाएं हैं।

सीने की राह, अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। और अब बात प्रधानमंत्री मानधन योजना की। ये योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो असंगठित क्षेत्र जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और खेतिहर मजदूर, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ये योजना उन श्रमिकों को एक औपचारिक पेंशन ढांचे के तहत लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के विकास में उनकी भागीदारी का सम्मान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये पेंशन प्रदान करने वाली एक शैक्षिक और अंशदायी सरकारी योजना है जो ये सुनिश्चित करती है कि श्रमिक जब शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाएं, यानी 60 वर्ष की आयु के बाद, तब भी उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलती रहे ताकि वे स्वाभिमान से जी सकें। इसमें आवेदन के समय श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलती है और लाभार्थी के इस दुनिया से जाने के बाद उसके जीवन साथी को भी 50% यानी कि 1,500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती है। इस योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, पासबुक या जनधन खाता और चालू मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के साथ आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और इससे संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मानधन पोर्टल योजना पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तेरे घर के सामने। और अब बात स्वास्थ्य की कर ली जाए तो जिसका सीधा संबंध होता है जीवन शैली और खान पान से, इसीलिए सही जीवन शैली और आहार अपनाना बहुत आवश्यक है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में शरीर को सही देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। वैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित और नियमित करना है। सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है और इसके लिए भारी वर्कआउट नहीं, बस सुबह शाम 20 से 30 मिनट की हल्की सैर, क्योंकि नियमित वॉक और योगासन से जोड़ों का दर्द भी कम होता है और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, जिससे गिरने या फ्रैक्चर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसी तरह आहार पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित और सुपाच्य आहार लें जिसमें फाइबर, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, जैसे दलिया, खिचड़ी, हरी सब्जियां, दालें, हल्के सूप और जो पचने में आसान हो। नमक, चीनी और ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन से तो भाई दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सुपाच्य भोजन और पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, गैस और अपच जैसी बुढ़ापे की जो आम समस्याएं हैं उनमें भी इससे राहत मिलती है। साथ ही तेल मसाला जो कम खाते हैं और हल्की सैर करते हैं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण भी इससे रखा मतलब मिलता है, उससे नियंत्रण होता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो बुजुर्गों के लिए 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और शरीर की इम्यूनिटी जो इससे बढ़ती है, बुजुर्ग मौसम बदलने पर जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसी तरह प्राणायाम, ध्यान और अपनों से बातचीत करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिमेंशिया आदि जनी मतलब भूलने की जो बीमारी होती है वो खतरा भी इसका कम हो जाता है। इसके साथ ही बुजुर्गों को सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए हम उम्र दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे जैसे पार्क में जाएं, किसी कम्युनिटी क्लब से जुड़ें और अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए घर में भी कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे शतरंज खेलना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है।

मेरे सनम, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और बात करें अगर सीखने की, तो सीखना सिर्फ स्कूल की किताबों या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है और ऐसा सफ़र है जो कि पैदा होने के साथ ही हमारे शुरू होता है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है। जिंदगी में मिली असफलताएं, गलतियां और अनुभव हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाते हैं।

इसलिए सीखना या सीखते रहना जरूरी है, चाहे उम्र कोई भी हो। नया हुनर, नई भाषा, जीवन को जीने का नया नजरिया हमेशा आपको युवा बनाए रखता है। और वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझो आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि सीखने की उम्र नहीं रही। ऐसा कहने वाले जरूरी नहीं बुजुर्ग हों, कुछ लोग आदतन भी ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये किसी काम को ना करने का एक बहाना जो होता है। किसी काम को सीखने के लिए सबसे जरूरी है उस काम को करने की आपकी इच्छा शक्ति। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी, फिर जानने किसी काम को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, तब तक आप कोई चीज वाकई नहीं सीख सकते। इसीलिए जब भी जहां भी अवसर मिले, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता, उम्र के किसी मोड़ पर काम जरूर आ जाता है। इसीलिए जब सीखना हो तो किसी का ना उम्र देखनी चाहिए, ना समय देखना चाहिए, और ना ही देखना चाहिए कि हमारा उस्ताद कौन है, यानी कि उसकी उम्र क्या है, वो छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सीखने से मतलब कोई कुछ भी सिखाए।

फिल्म थी सावन की घटा और आवाज़ थी आशा भोसले की, जो गीत आपने अभी सुना था। और अब बात एक ऐसी जगह की जहां स्वच्छता कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि जीने का सलीका है, वहां की जीवन शैली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के एक खूबसूरत गांव मावली नोंग की, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। ये गांव प्राकृतिक रूप से तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत और खास बात यह है कि यहां की सुबह की शुरुआत सफाई की एक खूबसूरत परंपरा से ही होती है। स्कूल जाने से पहले छोटे छोटे बच्चे, घर के बड़े और बुजुर्ग सब मिलकर गांव की सड़कों पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में गिरे सूखे पत्ते और जो भी कूड़ा होता है उसे बांस की खूबसूरत डस्टबिन में डाला जाता है, जो कि यहीं की प्राकृतिक रूप से बनाई हुई डस्टबिन होती है। साथ ही यहां प्लास्टिक के प्रयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। गांव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है और इसके साथ ही यहां कचरे से बेहतरीन खाद भी बनाई जाती है। यहां की साफ सफाई कोई सरकारी नियम नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की दैनिक आदत और परंपरा है। यहां के लोग कहते हैं कि सफाई उनके लिए कोई काम नहीं, ये तो भगवान की पूजा जैसा है। शायद इसीलिए इस गाँव को भगवान का अपना बागीचा भी कहा जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, साफ सुथरी पक्की सड़कें और मुस्कुराते हुए लोग, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हो। तो कभी भी अवसर मिले तो यहाँ जरूर जाएं और इस छोटे से गांव मालुंगकन को जरूर देखें। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही खूबसूरत है पूरा क्षेत्र जो है। तो यहाँ के गांव, जो ये गांव की बात हमने की, वो सिखाता है कि इरादा पक्का हो तो बदलाव किसी भी कानून या उसकी नियम की जरूरत नहीं होती है, बस एक सोच अच्छी होनी चाहिए तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो अगली बार जब भी रास्ते पर आप कोई रैपर या खाली बोतल फेंकने लगे या कोई भी कूड़ा फेंकते हैं, तो भाई मेघालय के छोटे से गांव को जरूर याद कर लीजिएगा, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी माना और जन भागीदारी से स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है।

अभी ये गीत सुन रहे हैं, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, और आवाज है आशा भोसले की। इसी के साथ मुझे यानी रेनू को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

당근. 아스티와 아프게 역세트와 세 주라. 아프가 갈 앙간.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है, गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का 4th संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस समय गृह मंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: शामिल हो रहा हूं। ये 4th संस्करण आते आते पहले संस्करण में यूपी में जो परिवर्तन हुआ है उसका दुनिया ने परिचय

0: किया, दूसरे में यूपी में आना है ऐसा इरादा जताया, तीसरे में यूपी में आए और चौथे में यूपी के विकास में सहयोगी बनकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत के विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि मेक इन इंडिया का अगला लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना है, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मिक्स 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर भारतीय एथलीट मनु टीएस पुवम्मा, एमआर विशाल टीके और मिथ्या रामराज को बधाई दी है। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ियों ने 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी मिक्स्ड युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट वडनगर गेव हिम द वैल्यूज दैट शेप्ड हिज लाइफ, व्हाइल काशी एडेड countless colors of service to those values. He noted that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. The Prime Minister said the infrastructure in villages has improved considerably, while self-reliance among the women of the country has also increased. Vice President C.P. Radhakrishnan has said, in an increasingly interconnected world, emerging challenges cannot be effectively addressed by nations working in isolation. Interacting with participants of the 4th edition of the International Strategic Engagement Programme, or INSTEP, at the Uparashtrapati Bhavan today, Mr. Radhakrishnan said the Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family and one future, reflects collective well-being of people around the globe. INSTEP is an initiative aimed at promoting regional security and closer cooperation among like-minded nations. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marks 12 years. In a social media post today, Mr. Modi said the initiative has led to more being made in India, more investment in India and more exports from India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, South African Foreign Minister Ronald Lamola and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira have strongly condemned the Pahalgam terror attack and reaffirmed their commitment to zero tolerance for terrorism. The three ministers met under the IPSA Dialogue Forum in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly yesterday and stressed their commitment to the UN Charter, international law, and a stronger multilateral system. In a joint statement, the ministers called for a comprehensive reform of the UN Security Council.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में दिन के 1:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सन 1969 की, जब हिंदी सिनेमा में प्रेम, त्याग, संघर्ष और संगीत की कहानियां दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। इसी दौर में आई आज की हमारी फिल्म अनमोल मोती। श्रोताओं, एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी का संसार शहरों की चकाचौंध से दूर समुद्र के किनारे बसे उन लोगों के बीच है, जिनकी जिंदगी का रिश्ता सीधे समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण एसडी नारंग ने किया। मुख्य भूमिकाओं में जितेंद्र, बबीता, जयंत, जगदीप, जीवन, डीके, सप्रू, राजेंद्रनाथ, अरुणा ईरानी, वीणा, टुनटुन और शबनम जैसे कलाकार इस फिल्म में दिखाई देते हैं। और इस कहानी की धड़कन थी समुद्र के भीतर छिपा हुआ वो मोती, जिसके लिए इंसान अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के किनारे एक छोटे से समुद्री गांव से। यहां के लोगों की रोजी रोटी मोती निकालने पर निर्भर है। समुद्र उनके लिए सिर्फ पानी का आधा विस्तार नहीं, बल्कि उनका घर, उनका खेत और उनकी जिंदगी भी है। इसी गांव में गांव का सम्मानित मुखिया गोकुल है। उसका परिवार और गांव के दूसरे लोग पीढ़ियों से समुद्र की गहराइयों में उतरकर मोती तलाशते आए हैं। गोकुल का बेटा माणिक भी इसी परंपरा का हिस्सा है। श्रोताओं, गांव में शादी ब्याह की खुशियां हैं, रिश्तों में अपनापन है और समुद्र के किनारे जिंदगी अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और इसी वातावरण में फिल्म का रोमांटिक पक्ष सामने आता है, विजय और रूपा की कहानी।

विजय की भूमिका जितेंद्र ने और रूपा की भूमिका बबीता ने निभाई है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है और समुद्र, गांव तथा मोती की दुनिया के बीच ये प्रेम कहानी फिल्म को एक अनमोल भाव देती है।

श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत को गाया था महेंद्र कपूर साहब ने, संगीत रवि जी का और बोल राजेंद्र कृष्ण के। गीत केवल प्रेम का इजहार ही नहीं करता, बल्कि उस दौर की फिल्मों की वो खूबसूरत परंपरा भी हमारे सामने लाता है, जिसमें कहानी कुछ पल के लिए रुकती है और प्रेम संगीत बनकर पर्दे पर उतर आता है। आपको गांव फिर लिए चलते हैं। श्रोताओं, गांव में माणिक और लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां होती हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। समुद्र की गहराइयों में मोती तलाशने का काम जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतना ही खतरनाक भी है। एक हादसा सबकी खुशियों को मातम में बदल देता है। मुखिया के बेटे माणिक की समुद्र में मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो जाते हैं, सरकार समुद्र में गोता लगाकर मोती निकालने पर रोक लगा देती है, लेकिन इस फैसले से गांव के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाता है। जिस काम से उनकी पीढ़ियां पलती आई थी, वो अब बंद हो गया है। यानी समुद्र सामने है, मोती सामने है, लेकिन उसे निकालने की इजाजत नहीं, और भूख किसी सरकारी आदेश को नहीं मानती, न समझती है। फिल्म यहीं से केवल प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि रोजगार, गरीबी, परंपरा और इंसान की मजबूरी की कहानी बन जाती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ही फिल्म में, फिल्म अनमोल मोती की। आपको फिर गांव लिए चलते हैं। श्रोताओं, इस कहानी में गांव की परेशानी के बीच एक बड़ा मोती कहानी के केंद्र में आता है। गोकुल अपने बेटे की मौत से टूट चुका है, लेकिन उसके भीतर अपने परिवार और गांव के लिए जिम्मेदारियां अभी भी जिंदा हैं। वो समुद्र की ओर फिर देखता है, जिस समुद्र ने उसका बेटा छीन लिया, उसी समुद्र की गहराइयों में अब वो उसके परिवार और गांव के भविष्य का सवाल छिपा है। लेकिन जहां दौलत होती है, वहां लालच जरूर होती है। गांव का जमींदार उस कीमती मोती को हासिल करना चाहता है और उसके लालच से कहानी में संघर्ष पैदा होता है। मोती अब सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं रह जाता, वो इंसान की नियत की परीक्षा बन जाता है।

श्रोताओं, इस गीत को आशा भोसले और साथियों ने गाया था। ये गीत उस दौर की फिल्मों की खासियत याद दिलाता ही है और ये बताता है कि मुश्किलों के बीच भी जीवन अपने लिए खुशी का कोई छोटा सा रास्ता खोज ही लेता है। लेकिन अनमोल मोती में खुशियां ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। गोकुल आखिरकार उस समुद्र में उतरने का फैसला करता है। यह सिर्फ मोती पाने की कोशिश नहीं है, यह उसके लिए अपने बेटे की मौत, अपने गांव की मजबूरी और अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा से सामना करने जैसा है। वो समुद्र की गहराइयों में उतरता है और यही फिल्म अपने सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंचती है। समुद्र की अंधेरी गहराइयां, चारों ओर पानी और जान पर खतरा, और सामने एक ऐसा रहस्य जिसके लिए पूरा गांव बेचैन है। गांव का मुखिया गोकुल एक और मोती तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी संकट और गहरा हो जाता है। एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है और गोकुल की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे समय में विजय और रूपा गोकुल को बचाने के लिए आगे आते हैं। समुद्र की गहराइयों में होने के कारण ये संघर्ष फिल्म के सबसे अलग दृश्यों में से एक बनकर उभरती है। विजय ऑक्टोपस से मुकाबला करता है और आखिरकार गोकुल को बचाने में सफल होता है। यहां प्रेम कहानी अचानक साहस और बलिदान की कहानी में बदल जाती है और दर्शक को एहसास होता है कि असली अनमोल मोती शायद समुद्र में मिलने वाला मोती नहीं, बल्कि इंसान का साहस, प्रेम और अपनों के लिए त्याग करना होता है।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज हम जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, फिल्म का नाम है अनमोल मोती। श्रोताओं, अब हम कहानी के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। कहानी के अंत में जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपने किए पर पछताता है और गांव वालों से क्षमा मांगता है। लंबे संघर्ष के बाद वातावरण फिर शांत होने लगता है। वहीं विजय और रूपा के प्रेम को मंजिल मिलती है और उनका विवाह हो जाता है। गोकुल भी अपने जीवन की अगली यात्रा यानी तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ने की तैयारी करता है। समुद्र ने सबसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उसी समुद्र ने गांव वालों को जिंदगी का एक नया अर्थ भी दिया। और इस तरह अनमोल मोती का अंत केवल एक मोती मिलने पर नहीं, बल्कि रिश्तों, प्रेम और साहस और पश्चाताप के साथ समाप्त होता है। तो ये खूबसूरत कहानी थी फिल्म अनमोल मोती की। और इसी फिल्म का एक और गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:40 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, सबसे पहले पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में और फिर हिंदी में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारियां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकदा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी नाल आपस च जुड़ रही दुनिया च उभर रही चुनौतियां दा असरदार ढंग नाल हल इकल्ले रह के नहीं किया जा सकता। मेक इन इंडिया पहलकदमी ने अज अपने 12 पूरे कर ले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पहलकदमी का उद्देश अजिहा बुनियादी ढांचा उद्यम और नवीनता तैयार करना है जिस नाल भारत विकास से खुशहाली के राह से अगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो अज ग्रेटर नोएडा च इंडिया एक्सपो सेंटर च शुरू होया। भारत दियां मर्दां ते औरतां दियां कबड्डी टीमां एशियाई खेडां दे फाइनल च पहुंच गईयां ने। हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सारियां दे योगदान अते हिस्सेदारी नाल ही विकसित भारत दा संकल्प साकार हो सकदा है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान तहत वाराणसी तों वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हां विच जीवन नूं दिशा देण वालियां कदरां कीमतां पैदा कीतियां, जबकि काशी ने उन्हां कदरां कीमतां च सेवा दे अणगिणत रंग जोड़े। उन्होंने खुशी जाहर की कि नौजवान भी सेवा दे वख-वख रंगां नाल इस यात्रा च वध चढ़ के हिस्सा लै रहे ने।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 दौरान देश में शहर और पिंडों में कार पाड़ा काफी घटिया है। पिंडों में बुनियादी ढांचे सुधार होया है और देश की औरतों में आत्मनिर्भरता वधी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने कहा कि हर बीजेपी वर्कर सेवा की भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय वालों दिखाए राह से चलन से माण महसूस करता है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वालों दसे 7 सिद्धांतों का जिक्र करदिया कहा,
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये

0: संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही सात सूत्रों को आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री नाल अपनी यात्रा के तजर्बे सांझे किए। श्री मोदी ने यात्रियों को सफर दौरान अपने तजर्बे डायरी च दर्ज करने लिए भी उत्साहित किया। अज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती है। वह एक महान विचारक दार्शनिक भारतीय जन संघ के सह संस्थापक सन। उन्होंने जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा च होया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के संपर्क च आए और RSS के प्रचारक बन गए। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाल 1951 भारतीय जन संघ की नींह रखी सी। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी नाल आपस च जुड़ रही दुनिया च उभर रही चुनौतियां का असरदार ढंग नाल हल इकल्ले रह के नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने अज उपराष्ट्रपति भवन च अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक भागीदारी प्रोग्राम के चौथे एडिशन विच हाजरी नाल संवाद दौरान यह गल कही। उन्होंने कहा कि एक धरती एक परिवार अते एक भविख का वसुधैव कुटुंबकुम वाला भारतीय आदर्श दुनिया के लोगों की समूहक भलाई नूं दर्शाउंदा है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कमांडेंट एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि महाविद्यालय रणनीतिक सिक्ख्या का उत्तम केंद्र है। यह हथियारबंद बलों सिविल सेवावां के सीनियर अधिकारियों और मित्र देशों के अधिकारियों दरमियान रणनीतिक सोच और अगवाई की समर्था नूं आकार दिंदा है। अज मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे हो गए ने। 2014 अज के दिन यह पहलकदमी निर्माण डिजाइन और नवीनता लिए आलमी केंद्र बनने की इच्छा नाल शुरू की गई सी। इस पहलकदमी ने सनअतों में उत्पादन निवेश और समर्था का पसार करके भारत के निर्माण दृश्य नूं बदल दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज मेक इन इंडिया पहलकदमी दी प्राप्तियां उजागर किया क्योंकि इस पहलकदमी के 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं। सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस पहलकदमी सदका भारत में होर वस्तुओं का निर्माण होया है, भारत च ज्यादा निवेश होया है, भारत तो होर बरामदकारी हुई है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव वख-वख खेत्रां च स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। यह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय चोन कमीशन ECI उत्ते बिल्कुल झूठे इल्जाम ला रहे ने। उन्होंने सवाल किया कि जे चोन कमीशन सही नहीं है तो फिर कांग्रेस केरलम विच किवें जित्ती। मंत्री अज अमृतसर विच श्री गांधी वालों कल चोन कमीशन ते लगाए इल्जामा बारे मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे सन। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा च शामिल होने लई अमृतसर पहुंचे हुए ने। उन्होंने कहा कि श्री गांधी वालों दसे गए सारे तत्थ गलत ने क्योंकि उन्होंने इस गल की जानकारी नहीं कि सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस के खिलाफ है।
2: सारे तथ्य उन्होंने झूठे बोले। एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के खिलाफ है वो उनको ध्यान ही नहीं है, इसका मतलब वो जानते ही नहीं है, जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं। आप केरला में आप किस आधार पे आ गए जी? अगर चुनाव आयोग ठीक नहीं है तो कैसे जीत गए आप जी बताओ? अभी सरकार किसकी है वहाँ केरला में? एकदम झूठ आरोप लगा रहे हैं वो। झूठ आरोप लगाना और भाग जाना ये उनकी फितरत हो गई है।
1: इसी तरह समाजिक न्याय और शक्तिकरण बारे केंद्रीय मंत्री वरिंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ ते नकारात्मकता की राजनीति च विश्वास रखते ने अते चोन कमीशन बारे गुमराहकुन जानकारी फैलाउन की कोशिश कर रहे ने। उन्होंने अज चंडीगढ़ विच मीडिया वालों भारतीय चोन कमीशन के कामकाज बारे श्री गांधी वालों लगाए गए इल्जामों बारे पुछे सवाल के जवाब विच यह गल कही। मंत्री ने कहा कि सारियां नूं नाल लैके देश दे विकास लई वचनबद्धता अते सकारात्मक सोच नाल अगे वधना चाहीदा है।
3: वो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ की और नकारात्मकता की राजनीति ही करने में विश्वास रखते हैं। सकारात्मक सोच के साथ में देश के प्रति विकास का भाव लेकर आगे बढ़ना चाहिए सबको साथ में लेकर, न कि केवल विरोध के लिए विरोध करना।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो UPITS का चौथा एडिशन आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा च इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट च शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन के इस समागम का उद्घाटन किया। बेहतरीन खरीददारी की शुरूआत इथों ही। विषय वाली यह नुमाइश 29 सितंबर तक जारी रहेगी जो राज के उद्यमियों निर्माताओं और बरामदकारा सीधे तौर पर आलमी बाजार नाल जुड़ेगी। इस समागम 2400 तो वध नुमाइशकारा 1.5 लाख कारोबार तो कारोबार यानी B2B खरीदारा अते 4.5 लाख तो वध आम सैलानिया की हिस्सेदारी देखने नूं मिलन की उम्मीद है। 85 देशों के 550 तो वध अंतरराष्ट्रीय खरीददारा के भी इस समागम च शामिल होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ एस

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को हर एक के तआवुन से ही हकीकत की शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा यात्रियों से बातचीत की। हुकूमत ने अगले महीने से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 70,000 देही नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका और ब्राजील के वज़ीरे ख़ारजा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलग IBSA मुज़ाकरात फोरम के दौरान मीटिंग में दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने के अज़्म को दोहराया। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत से इलाकों में हवा के दबाव के सबब मूसलाधार बारिश की वजह से तबाही हुई। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि अगले 12 घंटे में हवा का कम दबाव कमजोर पड़ जाएगा। और जापान में जारी एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर एक की शमूलियत और तआवुन के साथ ही विकसित भारत को हकीकत में बदला जा सकता है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले सेवा यात्रियों से वर्चुअल वसीले से बात करते हुए जनाब मोदी ने ये बात कही। जनाब मोदी ने उजागर किया कि वडनगर ने उन्हें ऐसी इकदार दी हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बनाया है, जबकि काशी ने इन इकदार में अनगिनत रंग भरे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि खिदमत के गुनागुन रंगों के साथ नौजवान भी इस सफर में हिस्सा ले रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 12 बरस में शहरों और देहातों के दरमियान फर्क में बहुत ज्यादा कमी आई है। आज देहातों के बुनियादी ढांचे में बेहतरी आई है, जबकि मुल्क की खवातीन में खुद इनसारी में भी इजाफा हुआ है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के

0: साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: इस बातचीत के दौरान यात्रियों ने वजीर आजम के साथ अपने तजुर्बात पेश किए। जनाब मोदी ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपने तजुर्बात को कलमबंद करने के लिए भी कहा। हुकूमत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 70,000 देही नौजवानों को अगले महीने हुनरमंदी की तरबियत दिलाई जाएगी। यह तरबियत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY-2M के तहत दिलाई जाएगी। इस योजना को मरकज की तरफ से शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब देही नौजवानों को रोजगार फराहम करने से मरबूत हुनरमंदी की तरबियत फराहम की जाती है। तरबियत की मुद्दत 3 से 12 महीने की होती है। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि स्कीम में शामिल सभी 31 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 2 साल की मुद्दत के लिए 9 लाख से ज्यादा निशाने दिए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मरबूत होती हुई दुनिया में उभरते हुए चैलेंजों से वो ममालिक मुअसर तौर पर नहीं निबट सकते जो अलग थलग रहकर काम कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति भवन में 4th बैन अल-अक़वामी अहम सरगर्मी प्रोग्राम इन स्टेप के शुरुआत से बात करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि वासुदेव कुटुम्बकम एक कुरय अर्थ, एक कुनबा और एक मुस्तकबिल की भारतीय इकदार से दुनिया भर के लोगों की इज्तमाई खुशहाली का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि इस फलसफे से भारत की G20 सदर नशीनी के दौरान बुनियाद के लिए एक मौका फराहम हुआ है और इस फलसफे से सबकी शमूलियत और मुआविन बैन अल-अक़वामी सरगर्मियों की जानिब भारत के नजरिए की रहनुमाई अब भी हासिल हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमात के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह इस विजन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को अमल में तब्दील किया है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत जो 2016 में शुरू की गई थी, 2026 तक गरीब घरों की खवातीन को 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की अहमियत को उजागर किया।
3: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में LPG गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: उज्ज्वला स्कीम से मुस्तफीद एक खातून ने आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बताया।
4: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है।
2: उज्ज्वला स्कीम के दूसरे मरहले के तहत लोगों को पहला LPG रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावा इस स्कीम में इंदराज के लिए बहुत कम कागजात की जरूरत है। नागपुर से धनंजय वांखेड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के वजीर खारजा माउरो वियेरा ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है और दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने के तई अपने अज़्म को दोहराया है। इन तीन वज़रा ने कल अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अलग न्यूयॉर्क में IBSA मुज़ाकरात फोरम के तहत मुलाकात की और अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर बैन अल-अक़वामी कानून और एक मजबूत तर कसीर मुल्की निज़ाम के तई अपने अज़्म पर जोर दिया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर गैर मुल्की रहनुमाओं और वजीरों के साथ दो तरफा बातचीत की और बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई हालात और वाकयात और आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउन से मुलाकात के साथ अपने दिन का आगाज किया।

0: He had topped the qualification with 587 points, including 29 inner tens. Indian men's and women's kabaddi teams have also entered the finals at the Asian Games after registering comprehensive victories in their respective semi-final matches. Indian squash players have assured themselves of 3 medals at the Asian Games, with Joshna Chinnappa and Velavan Senthilkumar reaching the mixed double semi-finals, while Anahat Singh and Abhay Singh entered the last 4 in singles. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone. Interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youths under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IPSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है. उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की. सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना. और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है. श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है. गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया.
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है. ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद. आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है.
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें

0: गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार।

0: सरकार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
2: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
3: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
5: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिगड़ी का लाभ मिला है जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
1: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 36 घंटे में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख

0: नविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी, छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में ये समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है।

0: उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
1: जी।
0: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
1: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
0: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
1: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
0: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
1: जी।
0: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
1: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
0: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
1: जी।
0: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
1: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
1: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
0: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,

0: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
1: मुझे बड़ा डर लगता है।
0: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
2: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
2: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा।
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

जी दोस्तों, सलील चौधरी के संगीत में सुनते हैं योगेश के बोल यशदास और आशा ताई की आवाजों में फिल्म छोटी सी बात सी ये गीत।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।
2: जी दोस्तों, आपने सही पहचाना, आप समझ कर रहे हैं फिल्म बॉबी से। गीत शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

जी दोस्तों, समाज की जय फिल्म मांग भरोसजना से प्यारा सा गीत आशा भोसले और किशोरदा की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

0: एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में, घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज, मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटी सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला गीत हमने चुना है फिल्म सुहाग से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी दोस्तों, अगला नगमा हमने चुना है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। ये गीत सुरंगी देवी, लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी दोस्तों, आपने फिल्म तेरे मेरे सपने से गीत सुना। सुरों की देवी लता मंगेशकर की आवाज में मोज की तरतीब दी थी एस जी बर्मन ने। प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से ये गीत। एक बार फिर सुरों की देवी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपकी नजर। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहां से उर्दू खबरों का बुलेटिन नश्र होगा।

0: आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। विकसित भारत के हदफ को हर एक की शराकतदारी और काम से किया जा सकता है हासिल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कानून साज असेंबली में आज भी अरकान ने अवामी नौयत के मामलात किए उजागर, वुजरा ने मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने का दिलाया यकीन। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे इकदाम को किया उजागर। और अगले महीने मुल्क में 70,000 दीही नौजवानों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत दी जाएगी हुनरमंदी की तरबियत। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के ख्वाब को हर एक की शराकतदारी और काम से शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। आज सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर तक सफर करने वाले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल तरीके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वडनगर ने उन्हें वो अकदार दिए हैं जिनसे उनकी जिंदगी संवर गई, जबकि काशी ने उन अकदार में खिदमत के जज्बे का रंग भर दिया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान शहरों और देहात में तफावतें और दूरियां कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। उन्होंने अनजानी के साथ उसूलों को उजागर किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर और कौम का मेमार करार दिया। एलजी ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने अंत्योदया और इंसानियत के पैगाम को आम किया और उनके हुसूल हमें एक लंबे अरसे तक तरगीब देते रहेंगे। कानून साज असेंबली के मौसमी खजा के इजलास के 5वें दिन भी आज अरकान ने अवामी नौयत के मामलात उजागर किया और मुतलका उजरा से जवाब तलब किए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास सियाहत महकमे का कलमदान भी है, ने आज ऐवान में जम्मू कश्मीर में सियाहत से मुतलिक बुनियादी ढांचे को तकवियत बख्शने के इकदाम को तफसील से उजागर किया। कई सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की टूरिज्म डेस्टिनेशन स्कीम के तहत पत्नीटॉप का नाम तजवीज किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वमंडल और उत्तर बहनी में प्रसाद स्कीम के तहत सियाहती कामों पर 45,88,00,000 रूपये का एक मनसूबा मुरतब किया गया है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा जिला में भी बंगस, साधना पास, कैरन और लोलाब में सियाहत से मुतलिक बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जा रहा है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने वजीर आला के बदले शक्ति राज परिहार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सैलाबों और बादल फटने की वजह से मुतासिर हुए बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए खातिरखा इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इत्तू ने अल्ताफ अहमद वानी के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि पहलगाम में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का 75% काम मुकम्मल किया गया है, जबकि बाकी मांदा काम तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। सकीना इत्तू ने सलमान अली सागर का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के कई तिबी इदारों में डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की किल्लत पाई जाती है, ताहम इस मसले पर काबू पाने के लिए दस्तियाब अफरादी कुवत को मौसर तरीके पर बरोएकार लाया जा रहा है। वजीर मौसुपा ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले जावेद हसन बेग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बारामूला कस्बे में 24,62,00,000 रूपये की लागत से 14 तरक्याती प्रोजेक्ट दरदस्त लिए गए हैं, जिनमें से

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सपहर के 4 बज चुके हैं। अब नश्र होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजाबती वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता।

अलका याग्निक के साथ ये थे विनोद राठौड़। फिल्म का नाम था जीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में है। फिल्म है रंग।

0: सपोर्टिंग बाय डिफरेंट एनजीओज जो है, हर किसी ने सपोर्ट करके उसको इतना आगे तक ले गया। अभी जो है इंडिया जो है ओपन डिफिकेशन जो है वो जीरो पे पहुंचा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आपने बताया कि G20 जो है हमारे 2023 में यहाँ पे इंडिया में ही होस्ट हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स आए, G20+1 भी आ गए। तो उन्होंने एक सबका था कि हमें जितनी तरह से अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, सेम जो अभी हमने रिपीट किया जो COP26 वाला जो मिशन लाइफ वाला, उसको हमने आगे कैसे एंडोर्स करना है। उसको एंडोर्स करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो। और उसके बाद जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्टिंग की जरूरत है, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की जरूरत है, जैसे कि बैन अवी तरह का सगल लखतुत्तों से गसुक बसीदियों के नखर चीन जरे, इनमें बहुत अच्छा काम ले गया। तो उसमें एक वर्ड्स आया था सर, ट्रेवल फॉर लाइफ जरे। ट्रेवल फॉर लाइफ जो है ये मोदी साहब ने भी वहां पे उसका एक विजन था कि हमें जहां जहां पे हमारा टूरिज्म जाएगा, उस टूरिज्म में जो एक इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो आपने बोला लाइफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस डेस्टिनेशन को लेके, तो उन्होंने बोला कि ट्रेवल फॉर लाइफ वाला एक मिशन हम स्टार्ट करते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी रखा, जिसमें जहां पे भी हो, जिस डेस्टिनेशन पे भी हो जाए, वहां पे उनकी क्लीननेस का ख्याल रखना है, वहां पे जो उनकी वाटर हुए जो चीजें जो है किस तरह से उसकी वाटर बॉडीज को हमने इस्तेमाल करना है, बहुत सारे एक सस्टेनेबल टूरिज्म जो भी इवन की टूरिस्ट गाइड होगा वो उनको अवेयर करेगा, उस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो जो है टूरिस्ट वहां पे जाएगा, जिस जिस टूरिज्म को वो हमारे लद्दाख और करगिल के लिए रेलिवेंट है सर, वो वहां पे उस टाइप जो हमारे जो 20+1 पे हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में, उसी वक्त उसको भी हमने अडॉप्ट किया था
1: सर। इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया।
0: हाँ, नेशनल पहुंचा
1: जो मिशन लाइफ मतलब एक धरे दे नहीं सोच सुझी देगा था इंटरनेशनल एक लेवल के कैंपेन जिले में ना जिस यहाँ गत्सु का मदद देने जो दी कैंपेन पोस मत प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव में ना गवर्नमेंट ने साथ कर लाज बचा जो छा ना गत्सु मदद लेवल जो की छू वाटर कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट मोबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब दो निकाह का तुगा इम्पैक्ट है जो दी मिशन लाइफ स्लोगन पर
0: बिल्कुल जो दरे दी हिसाब पे का दरे मोस्ट की सिर्फ कंपेन या अवेयरनेस अपना मेहदूचिक लुस्पेंदु या सिर्फ दे कहा था जर्चिन अदोआ अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस मेजरमेंट प्लस फीडबैक, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है एनवायरमेंट में। सिर्फ अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर देता है, बाकी अवेयर हर किसी को हो जाता है, एकदम नॉलेज मिल जाता है, हाँ जी क्या न्यूज पे आ गया रेडियो पे, बट अल्टीमेटली वो चीज ग्राउंड पे देखना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें एक मेजरमेंट यानी गचुक बस ये सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि आपने बोला वाटर यूज, वाटर को आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक रखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि हर डेली कितने परसेंट कितना पानी यूज करता है, जैसे कि उसका पीना होगा, उसका खाना कपड़ा कपड़ा धोने एक इंडिविजुअल गाड़ी धोने तक ये एक पूरा डाटा आ जाता है जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो सेम टूरिस्ट वाला का भी कितना हमारे पास गचुओं के इस्तेमाल से इम्पैक्ट पड़ता है। सेम थिंग आपका वाटर के बाद एनर्जी पे आता है कि एक इंडिविजुअल कितना एनर्जी कंजम कर रहा है, तो एक इस तरह की एक डाटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बाद एक हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंजम करता है, उनमें से वेस्ट कितना होता है। सेम इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक इंडिविजुअल कितना कचरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द्यून गंगमा अधिस जति का गतिस ठीक ठाक तरीके का गतिस मैनेज बसे दो गतिस जैसे कि कस बिल्कुल एक डैशबोर्ड चाहिए जो है चाहे कि वो एक आपके इंस्टीट्यूशनल वे से एक स्कूल में एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि आज जो है कितने परसेंट आपका बिजली यूज हुआ है, पानी यूज हुआ था, वो एक स्कूल में भी आप बोल सकते कि मेरे स्कूल में आज इतने लीटर हमने पानी जो है वो टंकी में डाला था, मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से मेरे यहाँ पे इतने पानी आ गया, तो वो आप कर सकते कि इंडिविजुअल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका वेस्ट आपके पास इतना आ रहा है, तो 100 बच्चे पे डिवाइड करो तो एक गचुगा भी गुजरे। ऐसा एक डेज में सिर्फ आपकी स्कूल्स में होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए, आपकी होटल्स में होना चाहिए, जहां जहां आपका है। तो इसीलिए सर एक हमारे लद्दाख में मिशन चल रहा है सर, मिशन खुरयुक

0: जरिए, वो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने किया है। तो उसकी अभी मेरे रिगजिन जी उससे भी बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक 300 स्कूल लद्दाख में एमओयू साइन किया हुआ है सर। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर उन्होंने एमओयू साइन किया है, और मिशन कुरियुक नाम का वो काम भी चला रहा है, जिससे जितने भी होगा आपका वेस्ट मटेरियल हो ये सबों को सिग्रीगेट कैसे करना है, जैसे कि प्लास्टिक को अलग से, शीशे को अलग से, कपड़े को अलग से, तो इस तरह से जो है अभी हमारे यहाँ पे काम होना शुरू हो
1: गया। yana chi so jula da khna gari gili ma nazar khususan dinga tin marmin pera pata fragile ha chi yana ta mana resource man chun che jo altitude mana cho ha higher bilkul gatsu ga du challenge gin jo ma ta ma limitation life po implement bachao challenge in amen ya ngati ma de nazar gatsu ga du fayda man jo aur ngati local communities na visitors ga sodiano contribute by change
0: बेशक सर, ये सबसे जरूरी, क्योंकि हिमालयन रीजन एक टाइम पे वाटर बॉडीज के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे। हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स होने के साथ साथ वो ग्लेशियर जो है हर साल अच्छा खासा हमारा रिचार्ज भी होता था। मता कम से कम हमारे जो मता इतियोदियोतपुंगा हम बोलते थे 4 फुट 5 फुट वो आता था, वो हमारे लिए रिचार्ज होता था, और ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हमारे पर नहीं पड़ा था। इवन कि क्लाइमेट चेंज बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का अब असर पड़ गया सर। लद्दाख का अभी जितना भी आपने देख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना बहुत शुरू हो गया है, और मेल्ट होने के बाद जो है छुमिक जर दे छुमिक नदी हर जगह पे गाता है, छुमिक बंद छुमिक बंद छे मल्ला पॉइंट के हर किसी के लिए कहा एक सोर्स नरगोज दे जो आता जहां से हमारे उसके लिए पानी आए। तो हमारे लिए सबसे पहला लद्दाख जो है इस वक्त सबसे चैलेंजिंग फेज पे इन्वायरमेंट को लेके दे फ्याते एक फ्रजाइल इन्वायरमेंट है, हमारे पास हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, हमारा वाटर सिक्योरिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसी की वजह से सिर्फ ये वाटर की ही वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है, हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हर चीज पे जो है हमारे लद्दाख का असर पड़ रहा है, वो सिर्फ छोटे से पानी की वजह से। उसका भी बहुत सारे असर देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हम जो है अभी सीधा जो एक लद्दाख जो एक ट्रांजिशन फेज पे आया है कि हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है, हमारा इकोनॉमी जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर या हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जो पुराना इरिगेशन कनाल्स है वो सब अब पूरा खत्म हो गया, जहां जहां पे इरिगेशन कनाल्स होते थे आज वहां पे रोड बन रहा है,
1: पानी ही नहीं
0: रोड बन रहा है। तो रोड बनने के बाद जो है हमारे पास जो है जहां जहां हमारा ग्रीनरी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा वाटर साइकिल में भी बहुत सारे असर पड़ता है। अगर आप लोग हम बोलते हैं ना साइंस और साइंटिफिक तरीके से, जहां से आपका ग्रीनरी ज्यादा होता है वहां पे आपका वाटर साइकिल भी अच्छा होता है, और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी अच्छा होता है। और आप हमारे एक आपका नहीं है तो एक लेमेन और आम आदमी गति कि लो फलान चीजों चेयर बना लेवल पे का वाटर साइकिल पॉन्ग कम सो ग्लोबल वार्मिंग पॉन्ग हर जाना का तो गाता छी दिया सर पूछे नहीं हो
1: चुया साहब आखिरी का जो दिया मोल छी स्कूल जवान लोकल बॉडी सुन हाँ इंस्टीट्यूशन सब जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हाँ छाना कम्युनिटीज गंगमा लोग से मिशन लाइफ पे का कंट्रीब्यूट बन चाहे जो पहला दी जो छाना यंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट छचाइन जो मिशन लाइफ पर बस
0: کسا بخشی جو سب سے پہلا یارز جس کی نتا گا نتی گزک ڈفرینٹ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سوت نتی ادے انسٹیٹیوشن اور انوالومنٹ نا نتا دیا نکھوں گی لخت جو ماں نتا من ضروری ان کیونکہ نتا سب سے پہلے انسٹیٹیوشن نتا ضروری سوندے جو سب سے پہلا نتا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ایک نتا شروع بنا کر دو سب سے پہلا نتا سکول سوت سکول جو ہے نا نتا گھر چیز ہی نہ تو سب سے بنیاد پہ نتی سکول انسٹیٹیوشن جو ہے در اس

0: Cool sa nuang ngas yara pela zes ki mission kuriul zere kong MOU sign basu duk dia chuk la ngati dere har school yanu sabse pehle phunla awareness ha zaruri dusra awareness ke sath sath action kong is adi chiz
1: practical
0: la practical jise
1: jise
0: hum R3 bhi kehte hain R3 matlab po reuse repair and recycling jo adon la zamana ka to gachuk bas ko dobara istemal bachin gachuk bas do chochi ya do ne bo ko yang ko la se anu gatas stitchin zare de bi sukul anu ga da eco club yo ma man zaruri kitchen garden ngati almost har jaga दो स्कूल इंट्रोड्यूस चार गोचा दूसरे किचन गार्डन छोटा सा एक तो फूल ला प्लांट्स के बारे में नॉलेज आ चाहे तीसरी बात जो है खुआ एक थोड़ा सा ग्रोथ हो तो दो इवन के रेस्टोरेंट होटल वाला जो है खुआ खुंती लेवल पे का किचन गार्डन ची क्यों मर गया दो ना सिग्रीगेट ना तीस साम से कोई मटेरियल उड़ना का तो दोन अलग अलग से खामा ना सिग्रीगेट बचा होटल पर खुद देश सिग्रीगेट बचा दो ना हर चीज यानो दूसरी बात ना ता ना दिया नो मिशन लाइफ यानो में वाचिंग जुगा ती हद से ज्यादा हमारे खाना भी वेस्ट हो रहा है वो भी एक मिशन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे कि हम 20 बंदे के लिए खाना ना बनाना है 20 बंदा कितना खाएगा उसकी जगह पे हमारा जो है कम से कम 50 बंदे का खाना हमारे से वेस्ट होता है क्योंकि अलग अलग बिल्कुल ये वाला भी एक बहुत बड़ा आता है जब ये एक तरफ से फूड सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा है वो अलग टॉपिक है मगर मिशन लाइफ का वो भी एक हिस्सा है जो वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हर चीज होगा प्लास्टिक जो है बच्चों को कम मिनिमल यूज करना है प्लास्टिक का क्योंकि बच्चे जो है कभी कभार प्लास्टिक का बोतल भी लेके फेंक देता है हर जगह तो दियुन गांव में गांव स्कूल ही लेवल के इवन की यूथ भी गांव गांव दिया लोग इन्वॉल्व शहर को शायद हो गया यूथ चेयर जर बना गांव ती यूथ ला इंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस ग्रीन इंटरप्रेन्योर सो एनवायरमेंट भी बराबर दो एग्रीकल्चर की तरफ सब गांव दियुन चाचा तीसरी बात हमारे बिजनेस लेवल पे रेस्टोरेंट हो होटल्स हो हर जगह को एनवायरमेंट दो तीसरा हमारा लोकल पंचायत LHDC है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है खुआ मिशन लेफ ने वो लखथुत्ता से गाता आगे हो चाहे सिर्फ मिशन लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगा अपने गला बस से लाइवलीहुड का भी वो हिस्सा बन सकता है जितना आप ग्रीनरी लगाएगा प्लांट ज्यादा आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसी लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल बनता है दिया खुरंग अता एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ गतंग
1: मलाम साहब ता मना मता प्रोग्राम पे टाइम पर मम्मी सोचो सेवा संकल्प अभियान है दिस गता नॉर्मल सर्विसेज कने बियॉन्ड देन ओ चिक दरे मिशन लाइफ इनिशिएटिव पॉम द जोसी सर जो चले रे जिस के गता गाम लोग से एनवायरमेंट इज थ्रू लुक्स बचाओ सर्वज सोशल लेवल का कंट्रीब्यूट बचाओ नति प्राइम मिनिस्टर मिशन पॉम हां स्वच्छ भारत अभियान जरे दी मिशन लाइफ कड़ी चिक वेस्टेज कम पिंच गाची सीखे ना वेस्टेज इवन जिंदगी टाइम पाओ वेस्टेज ना दी मोबाइल लेते टाइम वेस्ट अतः मोबाइल खोल प्राइम टाइम पे अनुगते मोबाइल लगता से दुख पना चाम जो नती टाइम वेस्ट चीज़ जो चाहे दोन गांव में तो नते लास्ट बसे नते न्यून मिस्सा पो वेस्टेज पो कम बचाओ दिया नती मिशन लाइफ वी मकसद पो इंजॉय जो
0: बेशक बेशक
1: ओलाम साहब ये रंदिया इस क्यों तो नची दी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव का सेल्फो बसे नती मिमांग सुन ले हगो तांचा ले यारां उजु सरे मुझे जो ध्यान है यंबो अतस दिन से सेवा संकल्प अभियान ही जो अति दि प्रोग्राम बुद्धि का थमा थोने यंग टॉपिक ची नंग यंबो यंतां सुपत कुचा नेमन गचा इजाजत शर्त बो जाजु खुदा ना सामाने फगरे

रिजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल एकांतिस फेसबुक प्रोग्राम सुनाबिन सेवा संकल्प अभियान स्कोरला मौजू पहन मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मीडियो में कहा आकाशवाणी करगिल का नजरिन वस्तु फितर बजाग सुगन मजद प्रोग्राम सदाकत ये प्रोग्राम पे आप सखमा सासनल सखमा कुरानी तिलावत ना ترجمہ انتخاب میں پہ ہلپ چکے

يوتمانا سيل روزي أغدا سيتم بكمون.

0: भी अगर ब्रेस्ट में ऐसे अगर लम्ब हो या मांस हो या अगर ऐसा कुछ है तो आपको शक होता है तो आपको आपके डॉक्टर्स के पास इलाज कराना है, उसके पास पहले चेकअप कराना है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है कि जब भी आपके ब्रेस्ट में आपके ब्रेस्ट में एक जाती है मांस एक बन जाती है या इसको हम गिल्टियां बोलते हैं वो बन जाती है, तो ये एक अलामत होता है। और साथ में क्या होता है कि बहुत टाइम से एक ब्रेस्ट में एक अल्सर जैसे ना कोई जैसे रेश होता है हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई जख्म जैसा कोई बन जाता है वो बहुत टाइम से हील नहीं हो जाता है ब्रेस्ट में। तो किसी किसी को क्या होता है कि वो निप्पल जो होता है ना निप्पल से कभी कभार जैसे क्लियर डिस्चार्ज या ब्लड इसमें से डिस्चार्ज आने लगता है बहुत टाइम से। चीजें हैं जो ब्रेस्ट में जो लम्ब बनते हैं या हमारे अगर जुबान में बोला जाए तो कोई जैसे कि आपके पीपियान छाना का तो स्क्रांसकंज छाना का तो या दो टाइम खचिक लूज दो बड़े छेंसों छाना दोस्त बस यारी कोई स्किन पैरा कोई पक्षपा हो चंदे गेंद पो ब्रेस्ट पक्षपा हो अगर का दुआ एरा इनमोल से दुआ अगर का तो मरपोसों से या इन्फ्लेमेशन जैसे दो सों से दो स्क्रॉ से गतु का टाइम काफी सफल लुस ना गतु दिया देगा नहीं रहा निपल पी नहीं रहा ए डिस्चार्ज होने का देना खराब से सोची या कलियर जो सब छी होने का तो दोस्तों बहुत टाइम से दो लूज ना करते यार डॉक्टर का तो अलामत छीन यार ब्रेस्ट कैंसर ही। तो ब्रेस्ट कैंसर यार इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है किसको नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आपने बताया पहले तो एक रिस्क फैक्टर क्या होता है कि इसमें एक तो एज मैटर करता है ना एज जैसे फीमेल्स में 50 प्लस में ज्यादा कॉमन होता है एक एज फैक्टर इंक्रीजिंग एज जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस
1: उम्र के हिसाब
0: से उम्र के हिसाब से एक रिस्क फैक्टर रहता है आपका। और इसमें दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जैसे ओबेसिटी हो गया जैसे कि मतलब वजन ज्यादा हो गया किसी को वेट ज्यादा है वेट पे कंट्रोल नहीं है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं रिस्क फैक्टर दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि जिसका ब्रेस्ट फीडिंग कभी किया नहीं हो किसी ने या जिसका जिसने कभी शादी नहीं किया हो या कोई बच्चा नहीं हो तो उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो तो उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर के।
1: अभी भी
0: ब्रेस्ट फीडिंग कभी नहीं किया हो तो यही ब्रेस्ट फीडिंग का एक फायदा है कि ये तो कैंसर से बचाता है। तो ये एक तीन रिस्क फैक्टर्स हो गया। चौथा हो गया जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते आप लोग कोई रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है और डाइट अच्छे से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे रेडिएशन एक्सपोजर कहीं हो किसी को कोई ब्रेस्ट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो एक्सरेस हो गया या कोई दूसरा टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो उसमें चांसेस बढ़ता है। तो हाँ और दूसरा चीज होता है और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है जैसे कि हार्मोनल थेरेपी कोई पेशेंट अगर किसी चीज के लिए या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 ईयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये
1: रिस्क
0: साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स है। ये रिस्क फैक्टर्स भी है साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं जैसे रेडिएशन हो गया यूज ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया अल्कोहल कंजप्शन हो गया जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं तो वो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा देते हैं। गुस्सा मेल में और फीमेल दोनों में। और एक चीज है रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला एक मोस्ट कॉमन चीज होता है जेनेटिक एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री अगर हो फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले किसी जैसे दादी को नानी को या किसी फीमेल को या उसकी कोई पार्टनर को जो उसे कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ फैमिली में तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से कैंसर हो जाता है।
1: हिस्ट्री अगर
0: ये चीजें रिस्क फैक्टर से उसके कॉजेज ये ब्रेस्ट कैंसर के।
2: डॉक्टर मोहम्मद आकाशवाणी करगिल शेरवान चुनी फिर प्रोग्राम थोचुगत असगर अली शितना

0: प्रॉपर खोंगी न तंग लेकिन खोंगी ती ड्यूरेशन पू कंप्लीट छामे में ता जो सुंपा ना खोंगी ता तंग जो ला सांबे लेकिन हमेशा हर वक्त गलत जरें दुखचास पुजुआ दुना कभी कुबार चीज जो लास शिक्स को ना दे लास में इंटरेस्ट मिलें चास पुजुआ कि गाला शिवाना दूला इंटरेस्ट मिलें चा दुना गोस्पा मतलब यानी खायों चस्पो दुना सोसाइटी ने अम्बो आइसोलेट लूसिन का त्यों ना रंग ज्यादातर अकेला का तो दुख पा पसंद बेनो ना तो ये एक मतलब बड़ी सेम्टम का तो इंजू की गतान दुगा इंसान का यू चेत होना कि पक्का कोई मेंटल हेल्थ वेल बीइंग चीक मैथ पे इंजू है
1: बिल्कुल बख्शी जुदा रे गतान ट्रूल मतलब मामिक थों जो ये रेजर संग की गतान अकेला दुख जा या हुनमे तिका ख माला ख किमो मुचस्पो नोन गतान दक्सन थों मचे खास कर जान नस्ट्रोल चीक सोशल मीडिया होता जो सोशल अलग अलग गतान साइट हो छना ओतुनिक स्ट्रोली का चाम चिक दी मेंटल हेल्थ का असर रिक छात हम बख्श
0: बिल्कुल जो क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ अगर याना गले दूसरे समय याना मेंटल हेल्थ याना ना दुख से कमरा चें दुख से यदा दी इंटरनेट ना दे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी यूज बसेगा ना इंप्रूव से मिन जो बल्कि मेंटल हेल्थ अगर कतोर गले कतुलु सुसमन छि चार क्वेश्चन गता आउटसाइड यानी नंग ना बाहर ला एक्टिविटीज बार गोशिन जैसे कि नंग लाज ऊंची या खामा अतामा हेल्प ची बना ऐसा क्या लच शीख ना ना चामलाख सुख्शे ने तालुक्स बना नॉर्बलांग सागरता ना या रंगे फ्रेंड नहीं हम बहुत सबसे आउटडोर गेम चीज से ना दी निज बात से चीज अच्छी नहीं आना जने मेंटल हेल्थ पर गैले गोशिन अब तो दी टेक्नोलॉजी नाम जा यार जिसकी मोबाइल वोबाइल जो दांस से तू से नो मानेंगे ती यूट्यून काफी शिकार शेड जो जो बिल्कुल वाकई जो लेक से ना खतरा खतरनाक दो जो असगर साहब जो की गाता थोम शेड की गाती यूट्यून ने काफी हद तक सुसाइड बंगाता पता शेड की सुसाइड बेवजह खोना मेंटल हेल्थ ही इशू इन मेंटल हेल्थ ही वजह से का सुसाइड केस बड़ी सोचिन बिल्कुल
1: बख्शी जो छाना दी मेंटल हेल्थ पर गैला चुमी मिना यानी गतंग दिमागी तौर पर गतंग हृदय से लुस पे मिंगना गजुक तरीका रिक यार जब यंगतिंग मिमा सुन ला यानी जरित गाज खास कर गतंग शर्बाना चुना नुखा जो खोंस यानी गति लोसो लोसो गेम सुने नुक हार्स यहाँ पर सुना नुक खोंस खागलन चा इन इन या बाकी गजुक तरीका रिक दोशिस
0: सबसे तरीका ना दिया जो कि ची बार क्वेश्चन जन गा यू चे अगर कतो मेंटल हेल्थ सही लुसस कतो समना पहला पॉइंट पुनी दिया इतुजोजो कि रेगुलर एक्सरसाइज यारां खुदा नेमा में शजदे मोतुगला से खस्तुए का खाली पेट छू गिलास गांव थूसी यारेस एक्सरसाइज आधा घंटा का तो मना यारेस तो यारेस मन हफ्ता चें यारी जिंदगी यारी लाइफ वो यारी बॉडी बिल्कुल अलग एनर्जी को मैं थोड़ी जैसे निज रेसी गला बस इतना चार टाइम निका दक्षा सी नाम से गाता सु इन जो शिकार छे जो मोबाइल इंगारा इन्ना यारा इन्ना यारा तक्सबा छे जो कि गाते छी बचा कि मोबाइल पुम लेक्स इन इंपॉर्टेंट छी माता मा दी मोबाइल पु जरूरत लेक्स ने दुल मन मोहब्बत छी मजाक पा गाते गाती प्रॉपर टाइम निका नीत लोक चस पु लेक्स ने जरूरी इन दूसरा गाता गाती हॉबीज यो प्रायर यो फियाग यो दून टाइम निका मना उससे भी गाता गाती मेंटल हेल्थ स्ट्रेस कम छे जिन वीरे से सबसे इंपॉर्टेंट पिन गाता गाती यानी रियाला सोसाइटी ने मुझे लेख सिना जरूर रियाला सोसाइटी ने मुझे यहाँ पर सेनों ने हिस्सा लें जस्पू लेख सिन नजरीन दुनिया यहाँ पर अच्छी जो दक्षता से युद्ध ने दूध हो मचे ने जो कि रंगे पेरेंट ना रंगे आम आमोस्ट्रीमो ने हम बो खामी लाशी ना सक्या दे लाशी ना दून बाग काम तो हो मचे ने जो दून ने हिस्सा लें जस्पू यंता गाती युद्ध ला दी मेंटल हेल्थ पे ना यानी दूर छे असर यानी लेख से न फन के चीज इंजो गस बख्शिस
1: बख्शिस जो छन खुदा न खस्ता गा में मां छेनो को दरे गते तखस न रिक जर संग सिम्टम्स रि जर संग नीत मा उन न हुन मिते यानी जल्दी खाय उ जस बो यान दजो तखस न रिक नते से रिस मोल संग पगजी गा निम मा छेनो दुजो शियो न गतो चम चिक गोस्पा को ओदे खसपानी का सोंसे खास कर गते सैक रिसर्च में जो ओदे डॉक्टर ने का सोंसे खसपानी का सोंसे चेस बुक समझ का सुन बाशिस
0: बाशिस जो मेंटल हेल्थ की इशू को अगर गता कम करना खत्म बुक समना सबसे पहला ना गता दे सेक्रेटरीज की जो दिमागी तौर का खुन से मतलब यानी लते ता जो डॉक्टर ने उनसे गते सलाहियत लेन जो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यारा मेंटल हेल्थ की मन बेसिक दवाई चिचिन या ना मेडिटेशन योगा निस रेसी दुबसियां या ना मन चां दवाई मैथ निस रेसी या ना यारे का काउंसलिंग इंजो यारेस काउंसलिंग जितना रियाला मी करने लेने उतना यारा मेंटल हेल्थी इशू प्रॉब्लम से हल चचिन जो क्योंकि इसमान इतना वो मतलब इतना इफेक्ट चचे मीन सबसे इफेक्टिव या ना जितना मोतुल्ला से खसने का योगा बना एक्सरसाइज बना दुना

0: बस जना दी मेंटल हेल्थ अर्धे से लुस्पिमिंग खाम अपन पेरेंट्स फैसजंग दोना एम्बो एम्बो स्कूली टीचर गजुक खाकरिक गजुक रोल रिक लुस पशन बस
1: बिल्कुल जो पेरेंट उल्ला रंग फ्री छान ला खर्सों मासी गलस पेरा मिजर चा खा प्रेशर मिता चा यान मेसा पुखा एप्रिशिएट बचा क्योंकि हर फिंग खुदास खुरी सलाहियत ची काबिलियत ची इतना सोचिन पेरेंट ला दे काबिलियत पु दे सलाहियत पु खुरी फ्रीन थूमर गोशीन टीचर ला इन्ना स्कूल का फ्रूना सुने सुने फिर बचा डिफरेंशिएट भी बचा खचिए सिल्वर यौन चीन खचिए सिल्वर गोरे लोपशीन चाहे ये सब इकट्ठा जाग से यानी पेरेंट ला इन्ना रंग फूनी दी फिजिकल मिन मा कोई सिर्फ जाचा थूचे का ध्यान मता मा कोई बिहेवियर पे का मेंटल हेल्थ का लेखसना खचन बसे तालुक भी लेखसना जरूरत है
0: बिल्कुल बख्शी जूस ना लगाता दुनमन हम जो जो गंगमा जम सोच है जो सोशल गैदरिंग एक सोशल लाइफ जो चुक गंगमा जम सोच गा नक्स बढ़ती गिन खुशी गिन दुख दर चिकता सुस न सुसुस शेर बिन सुसु न सुसु आतिस जर न चुक दरेंगता कुले कुले दुख कम सोचो दरेंगतिस गा सुची अगर खुली ओदे दुख चिकिन न गा प्रेशर चिखुएगा दिमागी गजुक नक्स भर दुखा सुन सुन दो दिर न जज बिजु ठीक बस सिंह मेमेट खुआल दुयंग ओदे दुन मन हम जोस्ते सुन सिंह सुन सुसु गंग जम सुन से गा नक्स भर दुख फलते बचस
1: जो कि दी नमजे की सुसिटेन यानी शर्मा सुन से जवान सकदम से या खुंती सोसाइटी स्पेरिक शेयर शेयर जो दी कन्वर्सेशन छचासपो सुन सुज बार पेंसपेरा छचासपो दी स्ट्रेस फ्री छचिन या रिलैक्सेशन एलिमेंट ला रिलैक्स टॉप चेंज जो छा दक्षा से दौर पे दी सिस्टम पो खत्म सो छा नातेज कोशिश बार गोशिन की नातेज हमेशा नाती सोसाइटी नो गैदरिंग चीज अक्चा या गैदरिंग ची बना डिस्कशी बना दून नाता चिंग दून ला प्रमोशन प्रमोट द बार गोशिन जो दून आगे खैर भी कोशिश बार गोशिन जो
0: कैसा स्पेरा मामो तुसपुस दुख लाजुक पिका गजुक फ्रेंच खेरस मीमांसुल्ला फेसंग शर्वा नचुनला लेपचुक समय तो आशीष
1: कसा जू सबसे इम्पोर्टेंट है दिया इनकी गती यूथ चाम सियोदना की यंतेज यंती सबसे अहम पुइन यंती किरदार पु बिहेवियर पु यंती इन दी बिहेवियर पु यंता गाती यंती यंती मेंटल हेल्थ के नहीं होता जिन छाने यंतेज जोर तां से रंग मेंटल हेल्थ पु सही जगचा क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर ये लखमो का तो लुजना यारी फिजिकल हेल्थ पोन लखमो लुश जिन ताकि यना जिंदगी हर चीज के यना कामयाबी थप जा जिन
0: दरअसपा यंतेज शर्बा नचून यानुक दिमागी और दिलुक्स और गैला जग पे मिंगना काजिम अली कना स्पेरिक त्रिसुक ज्ञान चौथपिन तेना त्रिसु नम्बो आकाशवाणी करगिली कना फ्रचुपत पि शर्बा नचुन ये प्रोग्राम पो थमातुन और जमा जगत यूमी तु सुनैनु के अंताना यहाँ थुक थुक दमन पो इजाजत छजबुस ये जो खुदाना सहमानी फकरियंग
2: शर्बा नचुन फे प्रोग्राम में तस्नावन चौथपिन सरतों से फ्रचुखन पिन मिन असगर अली मचाज आकाशवाणी करगिल का नजरिन वक्स पर फिदर बजा तुर्क छंदुक आकाशवाणी दहली का ना हिंदी ना अंग्रेजी खबर दिले बेत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र

0: राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियां और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction today with Seva Yatris traveling on the yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
0: Hame Atmanirbhar Bharat banana hai. Chunautiyan aayegi. Chunautiyon ko chunauti dene ka to sanskar lekar ke hum chale hain. Isliye hame har din ek nayi urja lekar सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा,

0: هندينا انغريزان خبرين انتزا اكاشواني ده هلکانا سنابه نتبين ميرومي قدو اكاشواني كرگلين
1: Work from home? High salary? Kase click mein? Aray waah!
2: Fussy!
3: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai
4: Jankar baniye, satark rahiye.
5: QR code scan karo, 5000 ka cashback pao. Wah, din ban gaya.
2: Fasa!
4: UPI pin entering, sirf paise bhejne ke liye.
3: RBI kehta hai
4: Jankar baniye, satark rahiye.
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: क्यूआर कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिन बन गया
2: फसा
4: यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
1: Work from home? High salary? Kase click mein? Aray waah!
2: Fussy!
3: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai
4: Jankar baniye, satark rahiye.
1: Work from home? High salary? Kase click mein? Aray waah!
2: Fussy!
3: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai
4: Jankar baniye, satark rahiye.

0: sport bacha asanga ti amya dananga danga ti yulan de culture bu kam kafi kam ju ki mara nga sna lang ki gangma jaga cha sok su sak cha ha ga jaga gangma jaga chi ga jam bacha asanga ti agar har dasa government ja plan mil chi recycle ba yani ngen chol o to government san dasa koshi bin di don recycle ba sa istemal ba encourage bin ki asalo bolong ati resource ba khatam chen thung jagan mang mu tong jagan mang mu lekin government la de chi bu kam asanga ti la sarkari la yang ati muluk pe la ti nation pe chana ga ti den resource bu bar bar istemal ba na ga ti ek to mil जरूरत पूरे है जिंजु निष्पंग अति खरको ला पॉल्यूशन गंदगी कम था जिंजु दो एक जरूरी जो आता ताकि अति रिसोर्स पंगति जरिया आता सेव चोक और यंबो मोदे चीज पंगति खरको ला यानी कि सासो बिल्कुल कम रिसोर्स बख्शिस
1: चाना दसा एरा जरना अति रियासती ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान जरें चिक दुतो मिशन चिक अति रियासती ते अनुस्त्रु चाना खे जी मिशन बसुल बात पे असल में मकसद पु एरिया साहब चिक गसुक जिंजु गस
0: अति दसा स्वच्छ भारत अभियान दिन चुनाती तो सब नाती ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस 2014 जब से खो पीएम दान फर जब पीएम दान में लोग रहा खोज महात्मा गांधी का फादर ऑफ नेशन बाबा कोम खुए बाद यानी कि जयंती का 2 अक्टूबर लखोज इस एक मुहिम चुखोज स्ट्रूस पिंजु दो इनमें स्वच्छ भारत अभियान हिंदुस्तान को बिल्कुल साफ सुथरा करना एक छो मुहिम चुखोज स्टार्ट बस पिंजु और खुरंग पहले का बींग से खुरेज लखपा झाड़ू खुरे रोड साफ बस पिन दो एक यानी कि स्तन इनमें की हर कोई यानी कि दिन चाहे अफसर में चाहे यहाँ सो में हर किसी को आगे जाके सफाई करना है छा नगत है क्योंकि महात्मा गांधी एक पूरा एक ड्रीम चिन्ह ख्वाब चिन्ह महात्मा गांधी एक बार जिसमें हिंदुस्तान आजादी जब तक हिंदुस्तान सफाई सो मैंने आजादी नामुकम्मल इनकम्प्लीट जब हिंदुस्तान साफ सुथरा एक कंट्री मिलता तब तक हिंदुस्तान एक सही मामले माने आता एक आजाद कंट्री आता मछाइन और अक्सर आता पता है कि दुनिया वर्ल्ड कंट्री मशहूर होता था फिनलैंड स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्रीज आज दुनिया गंगमा ची अच्छा मतलब मतलब कोशिश भी हर कोई का ख्वाब मत की भारी यूरोप में छोड़ क्योंकि यूरोप सबसे एक तो दमू ने साफ सुथरा कंट्री दे फिलहाल हर कोई यूरोप जाना चाहता है और अति पीएम मोदी ने देना एक मिशन चीन अति पूरा गवर्नमेंट सरकार उन्हें कि हिंदुस्तान एक साफ सुथरा कंट्री जो से यानी कि एक साफ सुथरा कंट्री जो दुनिया रास्ता की हिंदुस्तान भी स्वच्छ कंट्री एक साफ कंट्री और जितना सफाई होता उतना टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट सफाई होता है कोशिश भेजें गा कंट्री गंदगी गंदगी पॉल्यूटन करते हर कोई वहां जाना नहीं चाहता है तो दो अति एक मुहिम चीन जो अति पीएम और आज घर घर आज इसी की बदौलत आज लगभग 5-10 साल काफी चेंज हो जो सोसाइटी इवन अति गंदगी फमत पिन असा काफी चेंज हो जो और मीन सबसे जरूरी जो मीन सोच चेंज है चेस्पो असा को लेकर मीन सोच चेंज हो को लेकर असा इवन स्कूल प्राइमरी लेवल स्कूल सकते हगोता जो की सफाई चम जरूरी है हर साल एक दो बार छोप ठीक ठाक प्रोग्राम जब हर स्कूल का सफाई बार और दे ठीक ठाक खास असर दसा आता थोन जो अलहमदुल्ला पुराती कंट्री
1: जितना
0: साफ जितना सफाई ना मुलुक नगते उतना दे मतलब ओम पे यानी कि फ्रू नी दे जनरेशन पे सोच बढ़िया हो चिन और इंटेलेक्चुअल यानी कि इंटेलिजेंट मत हो चिन दे दो साइंटिफिकली प्रूफ हो दे फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट साफ सफाई जितना नगते उतना एजुकेशन आना दो यानी कि शिक्षा से मामले आना दो जबरदस्त आगे है सब आज हर रिसर्च दुनिया ने जबरदस्त समा समा इन्वेंशन दरिया समा समा चीज ट्रीटमेंट हर चीज आज यूरोपियन कंट्री चल रहे हैं क्योंकि सबसे पहला खून साफ सुथरे खून ज्यादा फोकस था जिन जो अगर नता देना हो इनकी दसंग एजुकेशन आना स्कूल हो सिर्फ साफ जमीन जो वहां जाकर पहले हर असेंबली का इन हर जगह पहला टीचर होने हर जगह से बचे पहला फिर सफाई का ध्यान था फिर यूनिफॉर्म से लेके फिर सॉक्स यूनिफॉर्म खोई पूरा बूट खोई मतलब गो खोई पूरा हर चीज था जिन जो देना टीचरों ने कोशिश जो की बेसिक देना फ्रून खो स्टार्टिंग हो जिंदगी खो पहला ने पहला सफाई खो इम्पोर्टेंस था उस बल्ला आगे जाके खो दे हैबिट पोल्यूशन और जितना खो साफ सफाई लूज ना करते उतना खो मेंटेलिटी खो सोच पो खो आगे है चेंज जो दे फिलहाल जरूरी जो सिलचे सिलचा अगर आगे छुक सामना करते सफाई लूश सख्त जरूरी जो एक तो मैं सोशल मीडिया वजह के साथ मैं डिजिटल जमाने मेरा घंटा सुन भी शोबे के गप एक किताब के मैं शोबू खुशा करूँ लगता एक तो मैं बहुत ज्यादा पूरा बोरिंग सोशल बलो छिन्न जो और ना अक्सर कम थो की फुसा शोबू के दिलचस्प और दो एक जरूरी जो की एक अट्रैक्शन था कि सिल भी माहौल देने फिलहाल खरखोर सफाई रान नाम पर देना सिल भी कमरा होना साफ सफाई अट्रैक्शन चीजें यानी कि दमोर दमो पोस्टर करते खमकुमा या गमला उमला या जो दमोर दमो से कमरा अट्रैक्शन चीज बना करते दो एक सिलचे का काफी असर था जो सिल भी एक शोक धनचिन जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा बचिन जो अगर कमरा या खरखोर सफाई जाना करते सिल भी इंटरेस्ट हो जाओ

0: Sayet programın tesna ben çetin programı sırtan se proçukan ben bin Muhammed Yahya. Mirime kadi akashvani kargilin vaks boşan bir bacardun sonsuk. Niyan bazat program Science Magazine programı sırtan se proçukan ben Muhammed Sadık.
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिन बन गया फसा
2: UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम जब शुक्र

0: Santi chumin ma gramu chuchale dahaju. Chana udun ngates gatsu wasong sin jere ngates dring ingyan matsik ngating yan kanun lang ngates frochupi fralugvet. Chana ngates des korla zirbo basang pela ngates dian uzes ngates heat transfer cha. Chana ngates heat pukhrang chin zu jere ngates des korla bleak zere. Chana heat ngata dula zere chin ki gau ngati yani ki ek energy form hai unchin jo ki yani ki transfer se chin chazar ni yara zarna yang chi shikena energy transfer se cha yang cha da langa ta yani ki heat zar chin heat hamesha energy shakal yanu ngata transfer se chin chana ngati di kharkhori chizat kun yang haju ka chu ngate transfer cha chu ka to zarna ka to ngati kharkhori chizat kun yanu yara har chiz ngata sunse sunse particle lalda ne unchin chana ode particle un yanu ओदे यानी कि पार्टिकल उन कुलिया ओदे ऑब्जेक्ट इन नंगोस ना उत्खन उन्हीं पार्टिकल उन्हें अनुच्छेद चीज़ जरना मोमेंट छ चीन ये राज जरना ओदे मोमेंट छे वजह से का चाम जितना मोमेंट ज्यादा तेज का तो छाना ओदे चीज़ पी नंगोस पी अनुक गाता थर्मल एनर्जी चीज़ चीन जो ज्यादा छ जितना थर्मल एनर्जी ज्यादा का तो छाना ओदे चीज़ पू गाता यानी कि ची महसूस छ चीन संते महसूस छाना दया चौगा गाता दो पता छे था जुदे ने कहना की गाता ग्रहमो ची के सोच सुख ग्रहमो गा चीज पियानो थर्मल एनर्जी कम का तो न का तो ओदे चीजात पुंगाता ची छा रुजू ओदे चीजात पुंगाता ग्रहमो फील छा गोस जितना थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट ची नंगोस ला ज्यादा का तो न ओदे चीज पुंगाता ची छा गोस संते महसूस छाना गातेस दिरिंग यन खन उन गंगमा गातेस यानी की फ्रोच चुगेत की गाता पता उत की ngati chiz zat zyada odde jese ki udun yang ata heat na temperature bare ngate bleak phases farak chik ngate sing yan
1: makhanu heat na temperature change ra difference
0: kyunki heat na ngata temperature ngata iska chuk sa chuk ngata word chik chuk sa chuk ngata la physic min haju chazna heat ngata chiz er chinde bana ek energy form hai chin jo transfer hota hai lekin ngata chante na grahmai ka utpana di temperature bare ngar banga bleak dekna zyada ahmiyat ches ki chazna temperature pu ngata chinde chinde bana टेम्परेचर पु गा ऑब्जेक्ट चीगी गा चीज चीगी ओदे नते जे निखिची बचिन चाम से ग्रहमो दुख या चाम से संते दुख जरे ओदु नते मेजर मेजर ओदु नते जरचिन टेम्परेचर हीट नते जरचिन एनर्जी ट्रांसफर छ जोला छुताजु छान आता दियानो टेम्परेचर मना मंगमो दाजु ओदे यूनिट्स पिलन नते दे थर्मोमीटर जचिन दाजु थर्मोमीटर जेसे नति हॉस्पिटल सगा नंगा तंग जेसे कि नता जर्मे के मना नता टेम्परेचर थर्मोमीटर त से चेक बेम इंदो हाजु छान ओदु चीकने चेक बसिन ngati body temperature charin ki ngata samsik grahmo duk ya body temperature pina zyada grahmo sonswa ya chante sonswa zarbi odu major be filang ata temperature use chhe chana thermometer is zare ka ngates odu major bachin chana dena ngates zaret ki ngati dianu ko energy na mungmo thaju source zare source mana zyada ot source o heat source mana mungmo lekin odanu na ngati kudrati source haju kudrati source jo natural source ngata sunlight ota gai kana ngata yani ki energy thopchin ngata sani kana samsik energy yongat heat yongat odu ngati aratikalep chin through radiation through lep chin haju radiation in chola ngate dena nu ngate jang gap nang zere thaju radiation chin zere chana ode aratikana ngata ek esa kudrati ngata den du न्यामत चीन की गाता ओदी कने हीट पों चीन हीट पों से आरती गलेब चीन आती का चाम से सबस्टेंस होत मटेरियल होत ऑब्जेक्ट होत गति नंग यो चाहे बारबान यो चाहे ची होत छियो दुन गंग मची चीन जो संते छ चीन देन गाता दो पता छ था जो चज नंग एग्जांपल चिंगा से रहता है जैसे कि गति चाय ज रहा जो गति कोरे चा चे गो दे चे गो उत्पना ओदे कोरे अंग उत्खनी चाओ कुल्या गति पहला संते होंदु फील गता महसूस छनु संते होंदु सते ची के नो सिंजर खन पंगाते से थर्मल एनर्जी ज्यादा होती छाना ओदे चीज पंगाते जे के कुल्या जक पना कुल्या खो कुल्या ग्रंग सिन ग्रंग सिन ग्रहमो छनु खाजो चा सो सिंज बना का तो खुस ओदे उत्खनी खुरी एनर्जी एटमोस गति सराउंडिंग उत्खन लची बसिन जो ट्रांसफर बसिन
1: बिल्कुल ये सिग्नल नंबर्स की एनर्जी ट्रांसफर छ
0: ओ बिल्कुल जो देना खरा गति मेन प्रोसेस पुखरा दे गतु छ छिन देना दुन गमा गता एनर्जी ट्रांसफर हो जैसे छाना गता ओदे चीजात पु गचुगा सो सिंजर तो खुरी एनु एटमॉस्फियर या खुरी सराउंडिंग उत्खन पला ओदेन खोसि बचिन ट्रांसफर बचिन छाना कुल्या खोए यानु थर्मल एनर्जी कम छचिन कम छे वजह से का ओदु माता ग्रहमो फील छचिन छाना अति सनलाइट नता एक इंपोर्टेंट ने के सोर्स छिन दी वजह से का नता चम से नति आरतिका सबस्टेंस ओदन ओदुन छिया छिन जबना अकन उत्पना ओदी आरतिका उत्खन सबस्टेंस ग्रहमो छिन ग्रहमो उत्पन हीट पुकुल्या ग्रहमो लता छचिन जुया ग्रहमो लता छे हिसाब पुगाता छिन अधि चीजा तो छनते छचिन छनते छाना का तो माता अधि दी वजह से का गाता दी एटमॉस्फियर पे नगाता छनते उस जगह फील महसूस हो से छुता जो
1: शुक्रिया
0: छाना देखे ना गाते जरेत दी प्रोसेस वह जो तना गाता हीट ना ट्रांसफर छेनु कोल्ड ना कोल्ड छे फिलहाल ट्रांसफर छेनु या गाता

0: ट्रांसफर चार्ज बना रेडिएशन एनो ट्रांसफर सच इन एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वजह से का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वजह से का नाता ची अचिन जो एनर्जी ट्रांसफर सच इन गानो रेडिएशन एनो दे जैसे कि गा जेरा मदर सानी कना एनर्जी नाता अर छु पहले बात या हीट ले बात डायरेक्टली मिले बात ची थ्रू ले बात रेडिएशन ओ या दी प्रोसेस पे नाता सनलाइट कना ची लेपचिन जो एनर्जी लेपचिन या हीट लेपचिन नाती अर छु पा दे वजह से नाती अर त्या हो सा छु पा सन नाती चाम चिक चीज गरम छाना रेडिएशन मान एग्जाम्पल चितांगत दे जैसे कि गाते जगह चे मेक तंग था जो गुण लगाते मेक तंग दिया गाते टिंग चे मेक तंग सना गाते दिचा रे दुख से स्ट्रोत स्ट्रोत में स्ट्रोत जो छा ना गाते कंटेक ची बात उदुला कंटेक में बात लेकिन गाता उदु कना कुल्या हीड हो संगाता हूँ डोस पत्सर बात फील हूँ मत यू मत में मजू अदु चीज हो सीन रेडिएशन छा ना गाते चंग मेत पा या गाती मतलब कंटेक ची मा छा या गाते फोर्सफुलिंग कन्वेक्शन ची चंग फेन चीज रे ओसो एक्सटर्नल डिवाइस यूज मा बा ओदे हीट पुंगाता ट्रांसफर सो गा दे जैसे कि गातस मेक तांस मेक तांग माना गाता छी सोजु
1: डोस
0: ओ या डोसे दे छुदा जु छाना उदुन गाता जरे दे जैसे कि गाती विंटर टाइम यंग इरा यंग जेर न कतो गाती विंटर टाइम इन छी चिन बनर गुल लंग आतंग चीज चिया लकपा का तो थुक पना गाता छी सोजु बहुत ही माने ग्रामो फील यो मिंदा दे जैसे कि गाते शिन चे कतो थुकता शिन चे कतो उदना छमेत
1: बिल्कुल बिल्कुल चक्स जरे जु चक्स
0: बिल्कुल
1: चक्स लगाता संग दो मत तेज ग्रह और एस कंपनी आता शिन चे थुने कतो खुद से ग्रह में सरो में था जो
0: बिल्कुल बिल्कुल दो चस मु सेंस बना कतो क्योंकि खुस हीट गति कना कूलर लता छाचिन छाना गति गति गतेस लगपा तो पना आता एस कंपेयर टू चक्स वचन गुन लगाता छिन छिन डुनमो छिन डुनमो मना गति कना हीट पुगाता गलता सु चक्स गलता सु छाना ओदी वजह से के फील पुगाता छि सु सरे जो ग्रह और ऊपर से आता पता होत कि गति खंगमा सा आमतौर पर गातेस मेटल यूज बात दे जैसे कि गातेस जंस कोल भी फिला जरे
1: बिल्कुल
0: जंस कोल भी फिला गातेस सबसे पहले गैस तुक्स गैस तुक या हीटर हो दिया अच्छी उतना सोर्स माना मंगो था जो छाना गातेस ओदी के चोक तो कले दिया जंस भी कले जंस भी कल बना ओदे मेटल खुला मेटल पीछे से जो फूड पुची से आमतौर पर गाती खामा ना इन ना गाते मेटल यूज भी चाह जर ना खो गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर चाह इन जबाना का तो मेटल हल्के गाती मीमांग सुन लंगन का तो इलेक्ट्रॉन सो मत इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव इन्हें जितना इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर तो बना उतना जल्दी खुश हीट ची बचिन जो ट्रांसफर बच छूता जो छाना जितना जल्दी हीट ट्रांसफर बना उतना गाता जान पाँग खोल वो इसीलिए गाते मेटल सारा यूज बस इन चीज वे फिलहाल जो
1: स्कूल
0: जन वन बिल्कुल
1: जल्दी हीट फूड
0: ट्रांसफर बिल्कुल छाना गाती जैसे कि या पुअर कंडक्टर जैसे या इंसुलेटर आंसर जो कि गाता जैसे कि शिंग जरे है जो प्लास्टिक जरे रबर जरे उदून ये चीज है ची ये ऊंचे मिंस जबने हीट ट्रांसफर में बात सुधे मावा ने चम है तीन चम मावा इंस जबने का तो इलेक्ट्रॉन ऊंची होती इंस जो फ्रीली मूव मीवास मवाना का तो हीट ट्रांसफर मवास मवाना का तो आते सो दो इंसुलेटर यानो यक्षा छाना गा सेना दे गातिर गुण वक्स पेनुंगा ता दे जैसे कि ग्रंग ले भाजू ग्रंग ले बना दे जैसे कि गाता फील हो कि ग्रहमो हो सर छुता जू छाना ग्रहमो हो सर गाता फील हो इसीलिए गाते गुण लंग इन ना गाते गुण टाइम पिकांग गाते चिवे जू डोनमो डोनमो घुसलक सक गोने था जू घुसलक सक गोने डोनमो घुसलक सक गोने चा गोनी इंज बना गाते ची के गोनी इंज बना क्योंकि गाती एटमोस्फियर है इन्वायरमेंट पिछुत गाती बॉडी वसंग ग्रहमोत ग्रहमोत पना गाती बॉडी ऑलरेडी हीट ची बेन लुशिन जो रिलीज बेन जक बेन जक पना गाती इन्होंने हीट सारे छाना का तो गाता कुल गातंग कुलर छागो इसीलिए गातंग कुलर छाना का तो गाते दी फिल गाते बसिन जो गाता वाम बसिन डोनमो घोसला कोने चाहे डोनमो घोसला कोने जब डोनमो घोसला कोने में वजह देना इनकी गाती बॉडी के हीट रिलीज कर दुछाना खोस इन्वायरमेंट पे जल्दी रिलीज है जमीन जल्दी रिलीज कर दुछाना गाता इंसान ग्रंग्स पर घोस दे हाजू दी फिल गाते प्रोटेक्शन बे फिला वर्म गुंजा गुनी ताकि गाती बॉडी हीट को कुल्या कुल्या इन्वायरमेंट यंग रिलीज हो छानांगास गाती ज्ञानखान उन्ना देना जरेत की ज्ञान मासिक गाती साइंस नयम बो इन्वायरमेंट यानो चाम से ची दुख गाती खरखोर उन्ना ची दुख उदून यानो हमेशा साइंस एक बुक चमिन बाके गाता साइंस एक बुक ही नहीं है बल्कि गाता पूरा इन्वायरमेंट यहाँ उत्खानी चीजात को नैना गाता साइंस छुपा के है छाना गाता उदून यहाँ संबता में जरूरत होत छाना दूसो गाता इन्वायरमेंट यानो गचो चीजात कुन गाता होल्ड दन इनो गचो चीजात कुन छंते छिंदु गचो यानी की ची छिंदु जरखन पो माते जिस तो कंक्लूजन लियंग देना का तो जर नगा तो चा सुन सुन जबन गाते ट्रांसफर वजह से ट्रांसफर मेथड सुना गाते छुछ छा नंगा सियंग

0: Muchas ocasiones que el gilicano se renueve.
1: Dr. Asha Mathu, psychologist, naturopathic, dona homeopathic, physician specialist, Kargil Alepsiot, Ruspezermo, Ketpezermo, Sezermo, Guezermo, Hepatitis, Thyroid, Puxmezermo, Male Female Problems, dona Ga Marishigyudna, Pazgo Hotel and Restaurant, Lasto Kargilla, Motugi to Surguikana, Fitogi to Surgasa Pektachain, Young Yantitasu Mingazerna, Dr. Jamakachik Kargilla Jukshainzu. प्रीमियम मिनसे बोनस पखिमो गलत जनते सरकारी नौकरी बैंक पीएसयू या यूनिवर्सिटी यूनियन लास बातना यंतस स्टोंग मिशी कना 50 लाख सपे पॉलिसी लेन मंगन चाइन सुरक्षा संतोष सुमंगल दोना युगल सुरक्षा चो ट्रस्टेड प्लान निंगम बो थप चाइन रिस्क कवर प्रपोजल एक्सेप्ट चाना एटीसी नाल जो टैक्स रिबेट दोना रिवाइवल फैसिलिटी निदिरिंग खुरंग स्क्योत पजत जांग निमुर लेउत खान पोस्ट ऑफिस निका या कॉल बाजत 01982257534 का लद्दाख पोस्टल डिवीजन डिपार्टमेंट छोसना मिमांसी फंतोक्स मिंगना

गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: समझ कर उनका हल ढूंढा जाए।
1: देखिए, आकाशवाणी श्रीनगर हमारे आकाशवाणी नेटवर्क में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये काफी पुराना स्टेशन है और पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस स्टेशन ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इस प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान को। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जितने हमारे उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ जोन के जो हमारे हेड ऑफ स्टेशन हैं और जो प्रोग्राम प्रमुख हैं, उनको आज हमने बुलाया और उनसे ये चर्चा की कि कैसे प्रोग्राम हमारे अच्छे बन सकते हैं, लोगों तक पहुंचने के लिए उनको प्रोग्राम्स को कैसे सुधारा जाए, हमारी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए। और उस मीटिंग के लिए श्रीनगर ने एक बहुत अच्छा होस्ट का रोल अदा किया है।
0: उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन अपने सामयिन तक मियारी प्रोग्राम और ताजा तरीन खबरें पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तियाब है।
1: रेडियो के साथ आप जरूरी नहीं कि हैंडसेट के माध्यम से ही जुड़ें, रेडियो के साथ आप डिजिटल माध्यमों से भी जुड़ सकते हैं, चाहे न्यूज ऑन AIR ऐप हो या YouTube हो या हमारा जो DD फ्री डिश है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, वेव्स ऐप है वहां से भी जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया के तमाम हमारे अकाउंट्स हैं जहां आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और आकाशवाणी से आप वहां जुड़ सकते हैं और विश्वसनीयता के साथ खबरें पा सकते हैं, तेज खबरें पा सकते हैं और अपने मनोरंजक प्रोग्राम जो है अपनी पसंद की अपनी भाषा में देख सकते हैं।
0: मीटिंग में आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरविंदर सिंह, प्रोग्राम हेड गुलाम रसूल आखून, CBS श्रीनगर की सरबरा समीना शाह, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा अशफाक अहमद शाह और कई दीगर अफसर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। जामिया तरक्की और समाजी बाइख्तियारी के नतीजे में अवामी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर में भी तरक्की की नई बुलंदियां छूने को देख रही है। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाप्त करें मेरा युवा भारत माई भारत से मुतालिक ये रिपोर्ट।
2: मेरा युवा भारत यानी माई भारत मुल्क के नौजवानों को कौम की तामीर से जोड़ने का एक कौमी प्लेटफॉर्म है। अमूरी नौजवान और खेलकूद की मरकजी वजारत के तहत अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म का मकसद नौजवानों को रजाकाराना खिदमात, अमली तजुर्बे, क्यादत और मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में शिरकत के मौके फराहम करता है। ताजा आदादशुमार के मुताबिक जून 2026 तक माई भारत पर 1,52,000 से ज्यादा रजाकाराना मौके दस्तियाब थे, जबकि तकरीबन 25,000 तजुर्बाती तालीमी प्रोग्रामों के 1,22,000 से ज्यादा नौजवान अमली तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी माई भारत नौजवानों को रजाकाराना खिदमात, कम्युनिटी सरगर्मियों, हुनरमंदी और कौमी यकजहती के प्रोग्रामों से जोड़कर उनकी सलाहियतों को मुस्बत समत देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मेरा युवा भारत का बुनियादी पैगाम वाज़ेह है, नौजवान सिर्फ मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बल्कि आज की तामीर वतन में भी अहम शराकत दार हैं। सैयद मुबशिर रफाई, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 110वें जन्मदिन के सिलसिले में बीजेपी के जम्मू हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें इस अजीम लीडर को खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने कहा कि आनजानी का नजरिया समाज के तमाम लोगों की खिदमत करने के बीजेपी के अजम को मजीद मजबूत करता है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर साली अनंतनाग पाप हरण नाग अस्थापन पर एक हवन का इनाकाद किया गया जिसमें काफी तादाद में कश्मीरी पंडित बरादरी ने हिस्सा लिया और खसूसी पूजा अर्चना की। मुल्क में मेक इन इंडिया के 12 साल मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की हुसूलियाबियों को उजागर किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस पहल से मेड इन इंडिया, मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया तस्वीर को तकवियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इस पहल के मुस्बत असरात तमाम सेक्टरों में आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेक इन इंडिया से बुनियादी ढांचा कायम किया गया, सनअतकारी को फरोग मिला, इख्तिरायत को दवाम हासिल हुआ जिसके नतीजे में भारत तरक्की के एक नए सफर पर गामजन हुआ। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अगले महीने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 70,000 दीही नौजवानों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DOM के तहत हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एक मरकजी मानत वाली स्कीम है जिसके जरिए गरीब दीही नौजवानों को प्लेसमेंट पर मबनी हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। ये तरबियत 3 माह से 12 महीने तक की होगी। दीही तरक्की की मरकजी वजारत ने कहा है कि तमाम 31

जय हिंद। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा प्यार भरा आदाब। फौजी भाइयों को आज हम एक ही कलाकार के गाए फिल्मी गीत सुनाने जा रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। तो प्रोग्राम में सबसे पहले पेश है पयाम सईदी का लिखा गीत सरोज नंदा के संगीत में। फिल्म का नाम है इश्क

एक ही कलाकार के गाए फिल्मी गीत अब आकाशवाणी कारगिल से समाप्त कर रहे हैं। आज के हमारे कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल। प्रोग्राम है फौजी भाइयों के लिए।

फौजी भाई और समीर कलखा की दाव समाप्त कर रहे थे नदीम सेवन के संगीत में। फिल्म का नाम था सड़क। अनुराधा पौडवाल की आवाज में पेश है सड़क फिल्म से एक और गीत। रानी मलिक के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम सेवन ने।

0: फौजी भाइयों, आप लगी हमें एक छोटे से वक्फे के बाद पेश करेंगे।
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
8: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
10: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्न रहे।
11: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: तीन महीने में पैसे डबल,
13: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
12: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
13: और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
14: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
13: और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
15: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के,
13: और फास्ट बोलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
16: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे, सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनुराधा पौडवाल के अपने अभी आप साथी फिल्म से गीत सुन रहे थे। नवाब आरजू को लिखे इस गीत को संगीत दिया था नजीम शवन ने। अगला गीत हमने साजन फिल्म से लिया है। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम शवन ने।

एक ही कलाकार के गाए फिल्मी गीत आप आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम है फौजी भाइयों के लिए, तो लीजिए प्रोग्राम के आखिर में पेश है इन्हीं की आवाज में दिल है के मातन है फिल्म से गीत।

अनुराधा पौडवाल के गाये दिल है के मानता नहीं फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम बाकायदा खत्म होता है। कल तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद

0: किया गया है।
1: पहले भारत की तीनों सेनाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
2: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
1: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
3: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
1: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व

0: सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉ जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषण को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और ये मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
2: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12

महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000-meter race. Baranika Ellen Govan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फासले तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बारानिका एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिर-ख्वाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने समाजी खिदमत, समाजी इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाज़ेह किया कि वडनगर से उन्हें वो इकदार मिली है जिन्होंने उनकी जिंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात जरूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुज़ाकरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मजीद मौक़र करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में ढांचा जाती इस्लाहात में ताखीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉ जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनक़िदा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाई ख्वाहिश मजीद मजबूत हुई है। डॉ जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के खिलाफ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि इस इदारे को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर अपनी भरपूर सिफारती सरगर्मियां जारी रखी। डॉ जयशंकर ने आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के अपने हममनसबों के साथ अलग अलग मीटिंगें की। इसके अलावा पनामा के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में डॉ जयशंकर ने अपनी मीटिंगों की तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि बातचीत में दोतरफा तआवुन, इलाकाई हालात

0: कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
1: इसके बाद दिसंबर 2019 में काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। साथ ही वजारत दिफा के दायरे में ही सीडीएस की सरबराही में फौजी उमूर से मुतालिक नए महकमे की तश्कील को भी मंजूरी दी गई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि सीडीएस के तकर्रुर ने हुकूमत के लिए सभी फौजी मामलात पर राबते के लिए वाहिद कड़ी का काम किया।
2: The appointment of the chief of defense staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the chief of defense staff, is also secretary military affairs. He is a one point contact, one point advisor to the defense minister, and of course in the security meet whenever the prime minister wishes to, the defense minister wishes to. At any point of time, they require advice, they need some kind of input. Just one point contact for all the three services, and that is the chief of defense. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
1: सीडीएस के उदय की तश्कील के बाद अब तीनों अफवाज को आला सतह पर मौसर क्यादत मिल गई है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी का कौमी सदर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट नितिन नबीन ने कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी हमेशा अंत्योदय यानी सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्की के फायदे पहुंचाने से तहरीक पाती है। उन्होंने कहा कि किसी जज्बे के तहत गांवों और कस्बों तक तरक्याती स्कीमों की तौसी की जा रही है। जयपुर के नजदीक दादिया में मुनाकिद सेवा संकल्प सभा से खिताब करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। जनाब नबीन ने कहा कि सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्याती स्कीमों की यकीनी फराहमी में अवामी नुमाइंदों को अहम रोल अदा करना होता है। जनाब नबीन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का असल मकसद तब पूरा होता है जब वो खुशी और गम के मौके पर अवाम के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद जनाब नबीन ने बिरला ऑडिटोरियम में नौजवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जनाब नबीन ने नौजवानों से तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कायदाना रोल अदा करने की अपील की। अमरीका और ईरान अपने दरमियान जारी तनाज़ा खत्म करने के लिए मरहलेवार तरीक़ेकार पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने तजवीज पेश की है कि अगर अमरीका अपनी नाकाबंदी और दीगर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म कर दे तो ईरान आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान ने सालिसी करने वालों के जरिए एक तजवीज पेश की है जिसके तहत ईरान अपनी शरायत पूरी होने की सूरत में आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा। इन शरायत में 7 दिन के अंदर तमाम महाजों पर जंगबंदी, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और तेल पर आयद पाबंदियों में रियायत शामिल हैं। इस दौरान एक अमरीकी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने भी कहा कि ईरान तनाजा खत्म करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार है और वो मजीद लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता है। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में भारत ने कुल 23 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 484.6 निशाने लगाए और 6.6 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की जोड़ी से आगे रहे। इस दौरान एशियाई खेलों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। वहीं खवातीन के पोल वॉल्ट में भारतीय एथलीट बारानिका एलन गोवन ने कांसे का तमगा जीता। इसी तरह खवातीन के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी कांसे का तमगा अपने नाम किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और खवातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरीज़दा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत